0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सबे श्रीलंकिया हंड
1: गुड मॉर्निंग सुदेशनाक उदय नवयाई विनाडी देकाई